का सरहंद सरसा नदी तो विछड़ के माता गुजरी जी अते छोटे साहिबजादे मुगल सरकार दी कैद विच साका सरहंद।

कितने भी चंगे कर्म कर लवे, उदे कर्म कीते हुए सारे निष्फल चले जाते हैं। जिमें कि 68 तीर्थां दा इशनान, परोपकारी जीवन बतीत करना, बहुत सारा दान पुन करना, बहुत प्रसाद करावे, पाठ करावे, पर जे निंदा हो गई ओ भी किसी महापुरख दी, ते कोई भी कीता होया कर्म फली भूत नहीं हुंदा। जेड़ा मनुख इस भयंकर रोग विच फसे

बात गुमान जैसे रैन परोहने उठ चल से प्रभात क्या तू रता ग्रस्त स्यों ये सब फुलां की बागात ये फुलां दी बागीची है संसार ये सदा नहीं खिड़े रहने भाई ये सदा नहीं खिड़े रहने ये डिग पैने हन क्योंकि निरंकार दी मर्यादा है आमन जान एक खेल बनाया जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जेड़ा संसार ते आया पहला मरना लिखा के आया के कदों मरना इसलिए हजूर बख्शिश कर रहे हन कि रंग मान ले प्यारिया जां जोबन निहुला जितने तक तेरे ते जोबन है बल है तेरे शरीर विच सेवा सिमरन पर पुकार करके कुछ नाम दियां कड़ियां पले बन ले बचपन खेड़ां विच बीत गया जवानी कर दे समान कठे करन विच बीत गई ते बुढ़ेपा बुढ़ेपे विच क्या तेनू चेते आवेगा बुढ़ेपे विच भी ओयो

हीरे लालां तो महंगे श्वास तू मिट्टी विच रोल के चला जावे जीवन दी बाजी हार के जेड़े जांदे हन उन्हां नूं फिर कदे अवसर मिलिया नहीं हजूर दा बचन है के जीवन दे नौ हिस्से तेरे लिए हन भाई हस खेड अपने बच्चियां विच सुख मान आनंद मान अपने कार विहार कर जीवन दे नौ हिस्से तेरे अपने हन पर निरंकार ने एक गल दा चेता कराया जीव नूं के ए मनुख दसवां हिस्सा श्वासां दा तू गुरु दे लेखे लावी उस अकाल पुरख

क्रोध दी अगन पड़क रही है। इना दे अंदर नफरत द्वेष भावना दी अगन पड़क रही है, जो इना नू मजबूर कर दी है कि ए जुलम करन। ए सोच रहे ने कि मैं भी इस तपस दा प्रभावित हो जावा, इस नाल मैनू भी कुछ प्रभाव पवे। पर मेरे गुरु ने, मेरे परमेश्वर ने जो मेरे अंदर एक नाम दा, जो सारिया शीतलतावां दा एक सोमा है, वो ऐसा अमृत नाम बख्शिश कीता है कि ए तपदे होए कड़ाहे, तपदे होए हिरदे उस नाम दी शीतलता नू प्राप्त करके शांत हो जांदे। पर ए शीतलता, नाम दी शीतलता उन्हां नू प्राप्त हुंदी है जिन्हां दे भाग चंगे होवन, जिन्हां दे श्रेष्ठ उत्तम भाग होवन। ते हरी नाम दी शीतलता उन्हां नू प्राप्त हुंदी है, वरना मनुख जबान तो ते जब जरूर जपदा है उस परमेश्वर दा नाम, पर जे अंदर क्रोध दी अग्नि होवे ओ जपे दा कोई फायदा नहीं। जे अंदर लोभ दी लालसा होवे, जे अंदर नफरत होवे, द्वेष भावना होवे, उस रसना तो जपे दा कोई फायदा नहीं। तो हजूर गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सारे संसार नू एक शांति दा उपदेश दित्ता है। ए क्रोध दी अग्नि बुझ सकदी है जे नाम दा शीतल अमृत ओ सरोवर ओ सोमा

पूरे गुरु दा मिलाप होया, उदी बख्शिश होई है। जमदूत मेरे नालों हट गए ने, उन्हां दा सहम मैनू हुण सता नहीं रहा, ओ भज गए ने मेरे कोलों।

पाशाह कहण वाले कह छड़दे ने भाई गुरु गोबिंद सिंह जी ने अवतारा दे बड़ा खंडन कर दिते कि उन्होंने दिल विच कोई भेद सी फर्क सी। पाशाह कहण लगे नहीं मेरा किसी नाल वैर नहीं, मैनू जिवें वाहगुरु ने गलां आखियां ओ मैं संसार नूं दस रहा। दूजी गल उन्हां तों विछोड़ के जे मैं आखां मेरे पैरां दी पूजा करो तां ते मैं भुल विचां। मैं कहिंदा बई नहीं ओ भी दस रहे ने मैं भी दस रहा, उस वाहगुरु दे तुसीं भी सेवक बनो, इसलिए मेरा किसे नाल वैर नहीं। हजूर कहें

अवगुण बड़ी तिखी छुरी मनुख दे दैवी गुणा नू कट के नकारा करके सुट दें मनुख मनुख ना रह के पशु हो जाता औगने आरा मनुख पशु है गुणवान प्रभु अपने प्यारियां दे हिरदे च गुण वसा के तोरदा है औगना दे वस पै के बंदा थले गिर जाता अपनी हस्ती तो नीवा हो जाता अवगुण मनुख दे गुणा नू कटदे ने दी हस्ती नू कटदे ते सतगुरु अवगुणा नू कटदे सतगुरु दे नजदीक होइए सतगुरु दे चरणी लगीए ते अवगुण कटे जांदे औगण कटे जांदे ने गुण निसरदे जिस सतगुरु पासों प्रभु नाल जुड़न दा उपदेश मिलदा जिस सतगुरु पासों हिरदे च नाम वसाउण दी जाच आउंदी जिस सतगुरु ने आपां हुणे तक पढ़ रहे सां एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर ना मुआ ऐसा जीवन बख्शिया है जो टिकिया रहन वाला अटल जीवन है ऐसा जीवन बख्शिया है जेड़ा मौत तो ऊपर है और आप देखते दे हो मौत आउंदी है ते बंदे दी कहानी मुक जांदी मनुखी जीवन दी कहानी मुक जांदी लेकिन एक गुरु का सिख है जिदी जिंदगी मौत कबूलन तो बाद शुरू होंदी पहला मरण कबूल जीवन की छड आस औगण मर जांदे नकारा मनुख मर जांदा एक सच्चे मनुख दा जन्म हुंदा गुणा दा जन्म हुंदा दैवी गुणा नू लैके मनुख उपर नू उठदा गुरु नू प्यारा लगदा गुरु नू पाउंदा है संसार नू चंगा लगदा और मेरे साहब ने ऐसी बख्शिश की है सानू जिवें महाराज ने पावन बाणी च किया है ना जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो आपे तैनू पता है साडा की हाल हुंदा सी तेरे चरनी लगन तो पहला साडी की अवस्था सी हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे तेरे चरनी लाके असी कीड़े बादशाह हो गए सरदार हो गए मान वाले हो गए रुलते फिरते कीड़े सत्कार योग हो और ये सत्कार इत्थे भी मिलता है तेरी दरगाह विच भी मिलता है तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिले है चूके सब सोग संतापे जिंदगी विचों संताप निकल गए चैन आ गया सुख आ गया जीवन में कायर होंदे सां बहादुर बना दिता नफरत नाल भरे सां प्यार नाल भर दिता आलसी हुंदे सां उद्यमी बना दिता

सत्संग बड़ा मुश्किल रह गया, चोखा मुश्किल, एक गया नहीं जाता। इन्नी तैयारी नहीं की हुई क्योंकि पहली बारी शायद दूजी बारी गाने लगे, तो माली गौड़ा बड़ा मुश्किल आ गया, एदा आन जान बड़ा विकट ते टेढ़ा जिहा है। आप सुनना

तेरी ये जवानी को मला जावेगी, थोड़े दिन ने बंदगी कर ले, क्यों के पता नहीं मौत ने केड़े वेले आना।

कुरुक्षेत्र में अश्वमेध जग अभंग थयो, हुन अमृत नाम विशेष इति जिन एक बार श्री वाहेगुरु कहो। आख्या वाहेगुरु जपन दा इड्डा वड्डा महात्म क्यों है? ता भाई साहब अगली पौड़ी

सिक्का जद हर दो आलम तेगे नानक साहिब अस्त फतेह गोविंद सिंह शाहे शाहान फजले सच्चा साहिब अस्त। ए लफज जेड़े लफज आप जी सरवण कर रहे हो ए लफज जेड़े सन सिख राज दे पहले सिक्के ते लिखे गए। जदों सिख राज दा पहला सिक्का

माधोदास बैरागी। गोदावरी दे कंडे आश्रम बना के रहने वाले जिदे आश्रम वाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जा रहे ने, इस बारे थोड़ा जहा ज्ञान जरूरी है। लिखे है लक्ष्मण देव का जन्म जम्मू अते कश्मीर की एक रियासत राजौरी विखे होया। जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध रियासत जिदा प्रसिद्ध नगर राजौरी, जिथे लक्ष्मण देव का जन्म होया। इन्हां दे पिता एक मामूली जहे जागीरदार सन और एक दिन शिकार खेडदिआं लक्ष्मण देव ने एक तीर दे नाल एक हिरनी नूं मार सुटिया, पर वह हिरनी गर्भवती सी। जदों हिरनी नूं तीर मारिया हिरनी जिहड़ी सी मरी, उहदे पेट विच दो बच्चे सन जेड़े के तड़फ तड़फ के वो भी मर गए। इन्हां छोटे छोटे बच्चियां दी मौत हिरनी दे नाल लक्ष्मण देव ने देखी, उहदे मन ते अजिहा असर होया कि उसने घर बार छड़ दिता। इस दुनिया तो उसका जी भर गया, पहला सन्यासी बने, उसका नाम नारायण गिरी पै गया, फिर बैरागी बने, योग सिख्या ले, फिर माधोदास बैरागी बन गया। कई जगह हुंदा होया, दखण महाराष्ट्र नादेड़ वाल तुर पिया, गोदावरी दे कंडे आश्रम बना के रहन लग पिया, अते अपना समा योग साधना विच बतान लग पिया। इस गोदावरी दे किनारे बहुत समा योग साधना करदया बीत गया। इत्थे ओ सारी दुनिया तो दूर सारी दुनिया नाल रुस के घोर तपस्या विच जुट गया। इसे जगह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आज अपने सिखां दे नाल घोड़ियां ते सवार होके पधारे हन। जिस वक्त माधोदास दे आश्रम पहुंचे ते माधोदास उस वेले अपने डेरे विच नहीं सी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज माधोदास दे डेरे पहुंचे अते जाके माधोदास दे पलंग ते विराजमान हो गए। माधोदास दे चेलिया ने कहा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं कि ए साडे स्वामी दा पलंग है, आप जी इत्थे ना बैठो। पर गुरु साहब ने कहा असां जिथे बहना सी बह गए हां, क्योंकि गुरु दे कौतक गुरु जानदा है। उधर चेले जंगल विच भजे गए, माधोदास बैरागी नूं जाके कहन लगे तुहाडे पलंग ते एक बड़ा तेजवान पुरश आके बैठ गया, लाओ लश्कर भी नाल है। उहदे चेहरे अगे किसे दीआं अखां नहीं हुंदीआं। तां माधोदास गुस्से विच आ गया, कहन लगा दिखावे पलंग पर बैठने का स्वाद कि जिहड़ा मेरे पलंग ते बैठा है मैं उहनूं पलंग तों थले डेग देंगा,
और अपनी योग शक्ति दे नाल जंगल में बैठे हैं पलंग नू उल्टाण दी कोशिश की थी पर माधोदास बैरागी पलंग नू उल्टा ना सके। जद माधोदास बैरागी ने पूरा जोर लाया पलंग उल्टाण वास्ते पलंग ना उल्टा सकया ता समझ गया कि मेरे पलंग ते जेड़ा बैठा है वो कोई मामूली इंसान नहीं। ते माधोदास बैरागी अपने आसन तो उठया और ए देखण वास्ते आश्रम वाल तुर पिया।

मिठी प्यारी अति मुस्कुरांदी आवाज विच आखिया, मैं गोबिंद सिंह हां। बैरागी ने फटिया फटिया अखां नाल उन्हां वल तकिया जिन्हां नूं तकदिया प्यास नहीं सी लेंदी। उसका शरीर कंब रहा सी,

जिसनु कड़ी कड़ी शिकारी तीर मार देनी। ओ हिरनी है ए धरती साड़ी जन्म भूमि, जिसनु जुल्मी अपने पैरों थले लताड़ दे पे ने, जुल्म पे कर दे ने माधोदास बैरागी ने। ए सुनिया होया सी और सुनिया भी कि गुरु अर्जन देव जी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी महाराज जिन्हां सारिया ने

महाराज ने माधोदास बैरागी नूं अमृत छकाया ते नाम बंदा सिंह बहादुर रखिया अते नाल इन्हां नूं गुरबख्श सिंह भी कहा जांदा। गुरु साहब ने अपने पंज तीर दिते जिन्हां दे नाल सुनने लगे हुए सन। पंज सिंह अनेकां वस्तुआं दे के बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं जालमा दा नाश करन वास्ते नादेड़ तों गोदावरी दे कंडे तों पंजाब वल तोर दिते।

माता सती ने उन्हां नूं कहा शंकर भगवान नूं, भगवान मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उन्हां सारियां नूं बुलाया है पर ना मैनू बुलाया ना तुहानू बुलाया, परंतु वह मेरे पिता का घर है इसलिए मैं जाना चाहती हूं। शिवजी भगवान ने कहा बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए, पर सती जी ना मने तो भगवान ने जाने की इजाजत दिती। सती जिस वक्त अपने पिता दशक प्रजापति दे महलां विच पहुंचे जिथे यज्ञ हो रहा सी, तां दशक प्रजापति ने सती नूं कोई आदर ना दिता, सगा शंकर भगवान का भी अपमान किया। जदों इस गल का सती ने बुरा मनाया तां दशक ने अगू सगा होर किया, ओ नंग तड़ंग शिवजी भगवान, मैं ते कदी भी राजी नहीं सा उसनू अपना जवाई बना के। सती ए बर्दाश्त ना कर सके, उन्हां योग साधना दे नाल अपने शरीर विचों अग पैदा कीती, सड़ के भस्म हो गए। शिवजी भगवान नू पता लगा तां उन्हां ने उसे वक्त अपनी एक लिट पुट के सुटी, जिदे विचों भयंकर आवाज करदिया होया महाभैरों वीरभद्र वगैरह पैदा होए, ते जिन्हां ने आग्या मंगी तां भगवान ने कहा जाओ उन्हां दुष्टां दा नाश करो जिन्हां ने सती दा अनादर कीता। तां उसे वक्त उन्हां ने दशक प्रजापति दा सिर वढ के यज्ञ दी अग्नि विच सुट दिता, हर पासे खून दे फुहारे छुट पए, सारे लोग इउं नसन लग पए जिउ प्रचंड महातांडव नचदी होई परलो आ गई होवे। इसे तरह एक कथा शिव पुराण दी, शिवजी भगवान ने महाभैरो नूं अपने तेज विचों जिवें पैदा कीता अपने लिटां विचों, इसे तरह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने तेज दे नाल माधोदास बैरागी नूं बंदा सिंह बहादुर बना के पंजाब वल तोरिया, जेड़ा क्यामतां जगाउंदा पचाल लिआउंदा खून दियां नदियां वगांदा होया पंजाब वल वध तुरिया। किसे ने पुछया बंदा सिंह तुसी ये की कर रहे हो, तां बंदा सिंह बहादुर ने कहा मैं अपने वास्ते कुछ नहीं कर रहा, मैं जालमां दा नाश कर रहा, उन्हां किलियां नूं ढा के ढेरी कर देंगा जिन्हां विच जुलम हुंदे ने, ओ शहर तबाह कर देंगा जिन्हां शहरां विच मजलूमां नूं जालम तंग करदे ने। इह कहिंदा होया बंदा सिंह बहादुर पंजाब नूं तुरिया जा रहा है।

बंदा सिंह बहादुर जगह जगह जालमां नूं सजा दिंदा होया सरहंद दे लागे जा पहुंचिया। सरहंद जेड़ा कि पंजाब विच एक ऐसा शहर सी जिहदी तुलना किसे समय आगरे दे नाल लोक करया करदे सन। आगरे शहर तो भी वधिया जे कोई शहर है तां सरहंद है। जिस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर सरहंद दे कोल पहुंचिया अपनियां फौजां दे नाल और इस सरहंद वल बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कहर दिया निगाह नाल देखिया, वो नजारा उन्हां दी अखां दे सामने आ गया। इस सरहंद विच वजीर खान ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे छोटे साहबजादे जिन्हां दी उम्र 8 साल तो भी थले, उन्हां जिउंदियां नूं इत्थे नीहां विच चिण के शहीद कर दिता गया। वह नजारा अखां सामने आया, अखां गुस्से नाल लाल हो गई। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने फौजियों नूं वंगारदिया होया आखिया, एहो ही वो सरहंद है जिस जगह मेरे गुरु के नन्ने नन्ने मासूम बच्चियों नूं द्वार विच चुनिया गया। मैं चाहना इस शहर का नाम निशान मिटा दे। वजीर खान ओदे अहलकार सब खत्म कर दे, नीहां विच साहबजादे चिणे गए। देखो कोई दीवार ना रहे, कोई मकान ना रहे, कोई किला ना रहे, कोई छत ना रहे, हल चला दो, इस शहर नूं मिट्टी च मिला दो। देखदिया देखदिया बाबा बंदा सिंह बहादुर की फौज ने सरहंद ते हमला कर दिता। वजीर खान अपने वजीरां नाल अहलकारां नाल जरनैलां दे नाल लड़न वास्ते आया, पर बाबा बंदा सिंह बहादुर अगे कोई टिक ना सकिया। देखदिया देखदिया शहर साड़ के सुआह कर दिता, किले ढा दिते, मकान ढा दिते, शहर नूं ढा ढेरी कर दिता। वजीर खान वह भी मारिया गया, उहदे वजीर अहलकार जरनैल सिपाही सब मारे गए। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद ते फतेह कीती। जिस वक्त सरहंद नूं फतेह कीता उहदी इट नाल इट वजा दिती और फिर फतेह दा डंका वजा के ए नहीं कहा कि मैं जितया, हाथ जोड़े ते कहन लगे, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आप दी कृपा द्वारा साहबजादियां दी शहीदी दा अज मैं बदला ले लिया। और 7 साल जुल्म दे खिलाफ तबाही अते बर्बादी दा ये तूफान बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उठाई रखिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर बेशक आप ना रहा, पर तुरकां दी हकूमत नूं उसने मिट्टी विच मिला के रख दिता। अते जदों फतेह कीती, तुरकां दी हकूमत खत्म कीती, तां उस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर ने फिर सिख राज दा पहला सिक्का चलाया और उसते अपना नाम नहीं गुरु दा नाम लिखाया। सिक्का जद हर दुआलम तेगे नानक साहिब अस्त, के ए सिक्का दो जहाना वास्ते है। गुरु नानक दी तलवार अते गुरु गोबिंद सिंह जी दी कृपा द्वारा

प्राणी पिता माता धर्त महत दिवस रात दुर्दाई दाया खेल सगल जगत चंगियाँ बुरियाँ माचे धर्म अधूरे करमिया हो अपनी के ने लेके दूर जिन्नी नाम ले आया गए मशक्कत का।

बाणी पढ़नी विखावा करके नहीं। जे किधरे कोई टूटिया होया मन, कोई टूटिया होया मनुख प्रेरणा दा सदका जुड़ जाए गुरु नानक दे चरणा नाल, ता समझ तेरा भी जन्म सफला। बाणी पढ़नी पढ़न लई प्रेरणा देनी, शुभ मार्ग ते चलना शुभ मार्ग ते चलन लई प्रेरणा देनी, सिमरन करना आप करना होरना नूं प्रेरणा देनी। किवें सिमरन करीदा है और धन करके सेवा जो अकाल पुरख वाहिगुरु ने बख्शिश कीती, धन पदार्थ किरत कमाई करके प्राप्त होया उस विच्चों

दूसरा रास्ता, दूसरा मार्ग ते दूसरी जुगत। शायद सानू दसते ने किते जातक नू वेख लै, पपीए नू वेख लै, जेड़ा स्वाति बूंद के पिछे पपी पपी प्या करदा। सब बाणी विच कहिंदे ने

होया बरस, पैंदा होया मीं, कितना सुहावना लगता है उन्हूं आस लग जांदी है कि हुण स्वाती बूंद भी डिगेगी ते मेरे मुख विच पै जावेगी। अगलियां पंक्तियां विच मेरे सतगुरु सानू समझाउंदे होए प्यारे आ, कलजुगी जीवां नूं संबोधित करदे होए सतगुरु आंदे ने, हर प्रीत करी जाए एहो मन दीत, ऐसा स्नेह कर ऐसी प्रीत कर, मन गुरु दे चरणां विच निछावर कर दे भाई।

सैप उपदेश कर देने प्यारे, अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना। धन गुरु रामदास पातशाह हजूर कहते ने अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम देव मुख लाए। नाम देव वर्गिया नू सतगुर ने अपने हिरदे नाल ला लिया, अहंकारियां नू पिठ दे दित्ती मुख नहीं लाया। जिना नाम जपिया सिमरन कीता, भावे कोई वड्डा है भावे कोई नीवे, लेकिन भाई सिमरन करन वालिया नू, नाम जपन वालिया नू, सेवा करन वालिया नू मेरे साहब अपने गल दे नाल ला लेंदे ने। हजूर कहिंदे ने मान ना की जाए शरण परी जाए, हंकार ना कर प्यारे, अभिमान ना कर, गुरु दे चरणा विच उहदी शरण विच आ जाए।

शैव फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साईं है। एक पल भी नहीं विछड़दा त्यारिया है, पाछा तू मेरे ते कृपा कर, किड़ी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मीह बरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याछा, हजूर कहंदे ने

गुरु नानक दी मोर ला के धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कृपा करके आंदे ने प्यारे कौ नानक छंत अनंत ठाकुर के उस मालिक दे कितने मैं गुण गाव बेअंत है मेरा पातशाह बेअंत है मेरा मालिक बेअंत है रहमतां दा साई कितने गुण गायन करें हजूर बाणी विच कहिंदे ने

एडी प्यास है तेरे दीदार दी, एडी आस है तेरे दीदार दी, निर्या मालका कर कृपा मेरे दे।

जगत गुरु बाबा धन धन साहिब गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जगत दे कल्याण करता मनुखता दे हामी दुखियां ते गरीबां नूं हिकड़ी नाल लाउण वाले संसार दी कल्याण करन वाले सतगुरु सच्चे पातशाह सोरठ महला पहला विच कृपा करदे ने।

तू दाता है, तेरे कोल सारियां दाता ने, तू दाता दा मुजस्मा है। पर सोचना तो मैं है भाई मैं मंगा की, हे मालिक मैनू ओ दात दे जड़ी सदा थिर रहे। करता तू मेरा जजुमान, एक दखना हों तै पै मांगू, देवो अपना नाम मैनू अपना नाम दे। ता नाम किदे कोलू मंग रहे ने, जेड़ा जर्रे जर्रे विच रमिया होया है, जेड़ा घट घट रव रहा बनवारी। ता साहिब सच्चे पातशाह दी महान पवित्र बाणी दा एक

कतहु सुचेत होके चेतना को चार किया, कतहु अचिंत होके सोवत अचेत हो। साहेब गुरु गोविंद सिंह साहेब जी, बहुत प्यारी रचना अकाल उस्तत विच फरमान दी। कतहु सुचेत होके चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होके सोवत अचेत हो।

आओ भाई, आज दे दिन अरदास करिए। पातशाह, साडे हिरदे विचों नफरत दी आंधी जो चलदी है उसनों मिटा। बख्शिश कीती सी आप जी ने भाई कन्हैये उत्ते, जिस वेले उसने दुश्मन नू दुश्मन ना समझिया, ते फिर तू सिख हो के सिख नाल नफरत करें गल बनेगी। कदी भी खून नाल खून नहीं तुलदा, पानी पाया ही खून तुलदे। नफरत नाल कदी नफरत खत्म नहीं होई, ओदे उते प्यार दा पाना पानी पाना पएगा। साच कहूं सुन ले हो सबै, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पाए। बाबा गुरमुख सिंह जी एक गल आखदे हुंदे ने, तुसी किसे दे घर चले जाओ, तुसी उन्हां नूं कहो मैनूं प्यार दिओ, कोई नहीं देगा। पर जे तुसी खड़ के कह दिओ आओ लोको मैं तुहानूं प्यार दिआं, हजारां लोग तुहाडे कोल आउणगे। ये पहल तू करनी है। प्यार असां देना है लैणा नहीं, देवे तां ठीक है, पर असी कहने इन्हें फतेह नहीं बुलाई, असी क्यों बुलाइए। ना भाई, वह नहीं बुलांदा, तू बुला ले, तू प्यार कर, तेरा फर्ज है। हंकार ते नफरत दी आंधी विच ऐ मेरे पातशाह, जिवें तुसी मलम ते पट्टी दे दित्ती सी, ते मानो गाउंदा गाउंदा यही कुछ कह रहा सी, भावें कोई मोमन वेख रहा है, भावें कोई पहाड़ी राजा है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, पानी मूंह विच देंदा होया इको ही पुकार है, केड़ी

कऊ जच गंधर्व उरग कऊ विद्याधर कहूं भय किन्नर पिसाच कहूं प्रेत हो कहूं हो के हिंदू आ गायत्री को गुपत जप्यो कहूं हो के तुरका पुकारे बांग देत हो कहूं को कुकाब हो के पुराण को पढ़त मत कतहूं कुरान को निदान जान लेत हो काऊ बेदरीत काऊ तांस्यों बपरीत काऊ त्रिगुण अतीत काऊ

इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी, सी कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो। कतहु विचार अब विचार को विचारत हो, कहूं निज नार।

सूरज में सस में नब में जय हेरो तहां चित लाए तहाई। पावक में अर पवन हूं मैं पृथ्वी तल में सुकहा न जाई। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाई। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाही। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे।

जमरौत दी जंग विच सिखा ने पठाना नू ऐसी मार मारी कि पठान कन्ना नू हथ ला तौबा तौबा कर उठे। काबल दियां गलियां बाजारां विच नलवे दियां गल्लां होण लगियां। नलवे तो डरदे पठान सूरज डुबदे सार घरां नू जंदरे ला अंदरी लुक जांदे। चार चुफेरे मरियां वर्गी चुप छा जांदी। अपने रोंदे न्यारियां नू चुप कराउण लई पठानियां इउं डराउंदियां।

0: सिख राज दिया हद्दा, दिनों दिन काबल वालू वद दिया देख, पठार सोची डूब गए।
1: अमीर काबल दोस्त मोहम्मद खां घबरा गया।
0: सरदार हरि सिंह नलुए दी चढ़त, पठाड़ा नू अपनी मौत दिसण लगी।
1: कई हजार मुल्किया कट्ठा कर शमी खान ने अपने दादे परदादे दी बहादरी दे वास्ते पौंदिया इंज आखिया।

0: 28 अप्रैल 1837 का सूरज चढ़दिया ही 1000 सिंघा ने पठाना नू जा ललकारिया। सत श्री अकाल दे जयकारिया नाल आसमान गूंज उठिया, तलवारा पिड़िया,
1: धरती लहू लुहान हो गई,
0: लोथा ते लोथा चढ़ गईया। गुरु दे सिंघा ने ऐसे हद दिखाए कि गाजिया दे दंद जुड़ गए। दूजे दिन तोपा दे गोले दागे, रात पैंदिया ही जमरौद किले दी सज्जी कंध विच पार पै गया।
1: हुण महासिंह अगे 3 काम सन, किले दी राखी करना, कंध दा पार पूरना ते पिशोर बीमार पए सरदार हरी सिंह नलुए नू सुनेहा पहुंचाना।
0: सिंघा दे रोक दिया रोक दिया। बीबी हरशरण कौर जत्थेदार तो चिट्ठी लै पेश बदल, किले विचो निकल तुरी, रातो रात पेंडा मुका, पिशोर च सरदार हरी सिंह नलुए नू जा चिट्ठी पुचाई। पढ़ के सरदार दिया अखा विच खून उतर आया, डौले फरके तलवार दे मुठे ते हथ गया। ऐ सोच के कि मेरी जिंदगी ही सिख राज दी जिंदगी है, ओ उठ बैठा। खालसे दी तलवार आज हिंदुस्तान दा इतिहास बदल सकती है। मैं जान नालो सिखी शान नू प्यारी समझदा हां। ऐ सोच दिया ही चट सिंघा नू इकट्ठे कर सरदार हरी सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

नगाड़े ते चोट लगी, खंडे तलवारा ते बर्छे लिशके, केसरी निशान चूले, कोड़िया दे पौड़ा नाल, पहाड़िया गूंज उठिया। 10,000 सिंघा ने जमरौद वालू कूच कर दिता। सरदार हरी सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

0: 3 अप्रैल 1837 दा सूरज चढ़दिया ही सरदार हरी सिंह नलुए ने सिख फौजां समेत बोले सो निहाल दा जयकारा गजा शम्मी खां दी फौज दा जा टाकरा कीता। तलवारां बरछियां विच्चों मौत दे चंगियारे निकले, लोथां नूं लिताड़ दे सिंघां दे घोड़े अगे वधण लगे, मनुखी सिर मतीरियां वांग पैरां विच रुलण लगे।
1: धरती लाल सूही हो गई। सरदार हरी सिंह नलुआ ते शम्मी खान मैदाने जंग विच एक दूजे नूं इउं टकरे।

0: सरदार हरी सिंह ने फट नू कुटके बन लिया, कोड़े नू जमरौद किले वालू मोड़ दिता। किले विच पहुंचदिया ही जत्थेदार महा सिंह ने नलुए सरदार नू कोड़े तो ला पलंग उत्ते लिटा दिता। तकलीफ वद्दी गई,
1: अद्धी रातों शरीर निढाल हो गया, जान साथ छड़न लगी, पर सरदार दे मुख ते लाली उसे तरह डलक रही सी, अजे भी सज्जा हाथ तलवार दी मुठ उते ही सी।
0: मैदानों परत के आए सिंगा तो लड़ाई दा हाल पुछया, जित दी खबर सुन गज के जयकारा बुलाया।
1: ते फेर सारे सिंगा वाल तक सरदार हरी सिंह नलुए ने हौसला दिंदे आख्या,
2: खालसा जी, मैनू अकाल पुरख दा सद्दा आ गया है। मैं पंथ वास्ते जमया सी, ते पंथ वास्ते शहीद हो रिया, मेरे पिछों घबराउणा नहीं, तुसी खालसा राज दे राखे हो, खालसा जी जित्ता जारी रखनिया, पठान मुड़ के हिंदुस्तान वाल मुंह ना कर सकन।
1: एह कहंदिया ही सरदार हरी सिंह नलुए ने अंतम सुनेहा इंज दित्ता।

क्रोध नाल प्यार कर दे। हजूर फरमांदे झूठ बोलना मुर्दार खाना चंगा लगदे, किसे नाल त्रोह करना इनू मिठे लगते ने। हजूर कहंदे ने ऐ वाहगुरु इन्हां नू रख लै इन्हां औगणा तों।

आओ भाई, बंदी छोड़ नूं अरदास कीती सी ना। पातशाह सी कैद होए पए, मेहर कर सानू इस कैद तो बंद खलासी कर, अपना पल्ला पकड़ा। गुरु पंचम पातशाह अरदास कर दे। पंच दूत मूड पर ठान।

कर काम। सिमरन तो बिना इंसान नहीं कामी कुत्ता है। आख्या कहने ने जून पोगरे बिन सिमरन भय कुकर काम। साकत बेसवा पूत नना बिन सिमरन गर्दब की न्याई। आ बिना सिमरन तो खोता बनिया खड़े।

बिन बाजे कैसो नृत्यकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरथे सब काज। नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जेवा कहा को बकता, बिन श्रवना कहा को सुनता। बिन नेत्रा कहा को देखे, नाम बिना नर कहीं न लेखे। बिन विद्या कहा को पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडित। बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना। बिन बैराग कहाँ बैरागी, बिन हो त्याग कहाँ को त्यागी। बिन बस पंच कहाँ मन

तुम्हारे नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे छापर बांध सवारे तृण को द्वारे पावक जाने कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन ते डारे मोढ़े वस्त्र का